नहीं गम करो तो परिशी जी ऐसे जी बोले मुरुकु लो मान अब माँ कुलो ना माँ की माँ ये बाबा माँ यूँ रीड ऐसे वे वे ओयो